0: की जेमर सुर संगीती सदन बख्श
1: श्री शादी को
0: ज्यादा का नाम सिंधी पत्र श्री शादी को ये जो दमुरा वाला हमारा